0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th of June.
2: किचन द स्टाइल डल लगदा बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया हुन टेंशन खत्म करो आ गया जी जे स्टोन मेसन पार्टी करनो बनाए एकदम क्लासी असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन
3: रेडी सेट गो चेस्टन फोर्ड डेंटिनोंग रोड ते तुहानू उड़ीक रहा है फोर्ड रेंजर रेंजर सुपर ड्यूटी एवरेस्ट ते सदाबहार मस्टैंग ब्रांड न्यू डेमो ते क्वालिटी प्री ओन्ड व्हीकल्स ट्रेड इन अते फाइनेंस ऑप्शंस वी अवेलेबल आओ ते अपनी नवी फोर्ड दा टेस्ट ड्राइव करो बिजनेस फ्लीट लाई गल करो व्हीकल एक्सपर्ट्स टिम फोर्ब्स या कोरी नाल रेडियो हांजी दे हवाले नाल पाओ 3 साल दी फ्री सर्विस चेस्टन फोर्ड रेडी सेट फोर्ड
4: रोज रोज शॉपिंग हुंदिया ने पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्हां ने
5: सूरज देवता
4: की मतलब
5: ओ कमलिए सन करंट वालियां तो जद्दा इन्हां ने सोलर पैनल लगवाया ता इन्हां दी सेविंग्स वध गई
4: मैनू नहीं पता आपा भी सोलर पैनल लगवाना है हुणे
5: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल कॉल सन करंट 0448-066-494 ते सालां तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम सन करंट देओ रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी
6: भैन जी की हाल है पिट दर्द दा
7: जदों दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया सब कुछ ठीक है थैंक यू एदे बारे दसन लई
6: और सुनो हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेवेटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदने लई कांटेक्ट करो स्लीप एंड रिलैक्स वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 0433-465-492
8: चलदी दा नाम गड्डी आते सुनिया ही होना ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनु चलाउन ले ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले याद रखो टायर फोर्स जिन्हां को लॉग बुक सर्विसिंग मैकेनिकल रिपेयर्स इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स यूनिट 1 19-25 सुमर्टन रोड कैंपलफील्ड कॉल 0390-8665 और विजिट tirefors.com.au
9: बलजीत व्याह वास्ते ज्वेलरी देखन

0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाईबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
2: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
0: जी तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं, डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने, बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 4229058 60 और विजिट bansallawyers.com.au।

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून.
2: रेडी सेट गो चेस्टन फोर्ड डेंडेनोंग रोड ते तुहानो उड़ीक रहा है फोर्ड रेंजर रेंजर सुपर ड्यूटी एवरेस्ट ते सदाबहार मस्टैंग ब्रांड न्यू डेमो ते क्वालिटी प्री ओन्ड व्हीकल्स ट्रेड इन अते फाइनेंस ऑप्शंस वी अवेलेबल. आओ ते अपनी नवी फोर्ड दा टेस्ट ड्राइव करो बिजनेस प्लेट लाई गल करो व्हीकल एक्सपर्ट्स टिम फोर्ब्स या कोरी नाल रेडियो हांजी दे हवाले नाल पाओ 3 साल दी फ्री सर्विस. चेस्टन फोर्ड रेडी सेट फोर्ड.
3: टेंशन निरी टेंशन
4: की होया
3: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं.
4: काका जी टेंशन छड्डो फोन चको कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नु जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा एम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने. हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
3: या 90-77-93-33
4: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au.
3: याद रखो 9077-9733
4: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
3: हर कदम तुहाडे नाल.
2: ओबिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उना दे सपनिया दा एक मजबूत कर. हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ओबिट होम्स अपने 44 वरियां ते तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक. अज ही पहुंचो ओबिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नो 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते.
5: की होया इनी टेंशन क्यों लेती हुई है
6: यार. की दसा मॉर्गेज दा काम आज भी नहीं बनया.
5: आज सिम्मी पहन जी आए सी उन्होंने अपना मॉर्गेज UV फाइनेंशियल सर्विसेज तो थोड़े टाइम विच ही करवा लेता.
6: अच्छा असि भी उन्होंने कॉन्टेक्ट कर दे फिर ता.
5: जेकर थानू भी लोड है होम लोन रीफाइनेंस कार लोन या फिर एनी अदर लोन दी ता आज ही कॉन्टेक्ट करो हरप्रीत सिंह फ्रॉम UV फाइनेंशियल सर्विसेज एट 0433-8833-11 और विजिट uvfinancial.com.au. मेरा

0: मिड 80s में हम लोग लास्ट
1: क्या
0: टाइम अंडर
1: बात
0: वन
1: है,
0: रूफ थे, तो
1: वाह वाह वाह वाह
2: वाह,
0: इट वाज रियली ग्रेट। और मंडे को वो यश जी के साथ बात करना मांग रही थी।
2: अच्छा,
1: ले देखो फैन
2: ओहो,
1: बहुत नहीं है जी यार, पर वो सिर्फ ना
0: यश जी
1: मामी
0: के
1: तो
0: फैन तो
1: जानते हैं तो
0: मैंने
1: उठे
0: कहा
1: मिलते लोगों को।
0: इंटरनेशनल फैन यश जी के।
2: ओह माय गॉड,
1: अमेजिंग अमेजिंग।
2: बस
0: नहीं तो संडे को हम लोग डिनर में खाना खाते वक्त तो मैंने यश जी का जिक्र किया
2: ओह माय गॉड,
0: कि शी इज एक्सेंट कुक एंड ऑल एंड शी वांटेड पिन्नी। मैंने कहा हम यश जी से पिन्नी ऑर्डर करते
1: जिस तरह गए उसमें क्या मेलबर्न पिन्नियों पिन्नी हो यार,
2: बिल्कुल।
1: वाह। रिचर्ड जी,
0: तो
1: डू यू लाइक अपना की कहते हैं पिन्निया, हैव
2: देसी
1: यू हैड
2: खाना,
1: पिन्नी?
0: या आई आई लव एवरीथिंग, आई ईट एवरीथिंग। मैं दुनिया घूमता खाली खाना खाने को और लोगों को
1: खाना
0: मिलने को।
1: खाने
2: वाह
1: को,
2: जी वाह,
1: ये बढ़िया
2: मतलब
1: है।
2: वीकेंड आपका गेट टुगेदर हुई अपने ओल्ड बडीज के साथ, है ना?
0: यस यस यस।
2: वाह जी वाह, हम
0: एंड
2: आपकी
0: ऑल्सो
2: वीकेंड
0: वहां
2: पे, पिछले वीकेंड हुई, हमारी इस वीकेंड होगी तो फिर अगले हफ्ते
1: है
2: मैं
1: यार, मैं
2: बताऊंगी।
1: लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, मेरे तो दोस्त बड़े दूर दूर ने।
0: और कल मुझे चीफ गेस्ट बनाया गया बट मैंने
2: ओ
0: डिक्लाइन कर दिया
1: कहां पर?
0: बिकॉज माय खोखो क्लब, दे हैव इनवाइटेड द
2: अच्छा,
0: हेड कोच ऑफ नेपाल खोखो टीम, द वर्ल्ड कप खोखो टीम,
1: पर खो क्या रहे थे
0: एंड
1: तुम लोग?
0: बिकॉज कुछ अभी मिला नहीं, बस खोए रहे
1: अच्छा फिर
0: थे।
1: ठीक है,
0: नहीं, माय टीम हैज वन 4 मेजर इवेंट्स एंड टूर्नामेंट।
2: वाह
0: दे वन इन द सिख गेम्स, दे वन इन द शेफर्टन, दे वन इन मल्डूरा, दे एंड अनदर प्लेस दे वन। सो
1: ओके।
0: बट दिस जेंटलमैन इज, वी हैव इनवाइटेड ऑल हिम ऑल द वे फ्रॉम नेपाल एज अ हेड कोच ऑफ द नेपाली खो खो टीम। बट
2: ओके,
0: मैंने हैंडबॉल कर दिया मेरे फ्रेंड को हु इज फ्रॉम द नेपाल काउंसिलेट, आई सेड यू प्लीज कम एंड ऑनर हिम एंड प्रेजेंट हिम विद द ट्रॉफी एंड ऑल। तो कल वहां जा रहे हैं हम उसके लिए।
2: ओके
1: ओके
2: ओके,
1: ओके,
2: वाह वाह,
1: वेरी गुड वेरी गुड। आपका उम्मीद करते हैं आपका बहुत बढ़िया बढ़िया रहे वीकेंड सरकार।
2: थैंक यू जी,
0: बहुत
2: थैंक यू रिचर्ड
0: बढ़िया।
2: जी।
0: नहीं, और मंडे को माय फ्रेंड वांटेड टू टेल यश जी बिकॉज
2: हाँ
0: खाने की बातें चल रही थी,
2: जी
1: जी
0: तो मोमो मोमो की बातें आ गई बचपन की, कि मेरे मम्मी कैसे मोमो बनाते थे।
2: अच्छा,
0: एंड शी सेड यू कुड नॉट एक्सप्लेन टू देम, सो इट वाज अ वर्कशॉप फॉर 5 आवर्स।
2: आप
1: वाह,
2: मेरा YouTube वीडियो दिखा देते
1: अल्लाह, ये तो कोई गाल नहीं है।
0: आपका YouTube दिखाया था, बिल्कुल दिखाया एंड सब्सक्राइब भी करवाया उसे।
1: वन मोर पॉजिटिव थिंग हैपेंड टुडे, वेरी गुड वेरी गुड।
0: तो आप मोमो यूज टू बी अ वर्कशॉप बिकॉज कुकिंग ऑलमोस्ट 1,000 मोमोज, दे वर लाइक चार हम मुस्टंडे भाई और मॉम डैड एंड टू हेल्प धर्मेंद्र एंड गायत्री एंड देयर 3 किड्स एंड देन माई फ्रेंड। तो 5 घंटे लगता था मोमो बनाने को एंड देन एवरी 20 मिनट्स इट यूज टू कम आउट ऑफ द फ्लेम कुको के। तो वी ओनली यूज टू गेट 15 to 20 मोमो, सो ईटिंग 100 मोमोज इन 5 आवर्स इज नॉट अ बिग डील।
1: बल्ले
2: बाप रे, वाह वाह
1: रिचर्ड जी,
2: वाह,
1: मोमोज आपने खाए हैं, पसीने मेरे छूट रहे हैं,
2: भला हो
1: वेरी
2: आंटी
1: गुड यार। मैं
2: ओह माय गॉड,
1: थैंक यू फॉर कॉलिंग, थैंक यू फॉर
2: थैंक यू जी,
1: डसिंग अस कि आपने बड़े मोमो शोमो खाए हैं जी।
2: कहाँ
1: वेरी
2: कचौड़ियों से
1: गुड,
2: बातें चलती चलती कि मोमो पे आ गई।
1: वेरी
2: मुझे
1: गुड
2: तो
1: वेरी गुड।
2: मेरे बैकग्राउंड में एक ही गाना चल रहा था जो बच्चों का फेवरेट कार्टून है इंडिया में,
1: कौन सा?
2: छोटा भीम छोटा
1: हाँ,
2: भीम,
1: बड़ा ना बड़ा
2: क्योंकि
1: चल रहा।
2: क्योंकि 100-100 मोमोज खाना तो
1: अच्छा
2: मैं,
1: ओके,
2: उसके
1: मैं
2: लिए।
1: कभी देखा नहीं, मतलब मैं
2: हाँ,
1: मेरे ख्याल
2: मैंने नहीं
1: नाल
2: देखा, पर
1: टाइम चला गया
2: आसपास
1: था
2: आसपास के
1: हाँ,
2: बच्चों
1: हाँ,
2: को।
1: हाँ, हाँ, पर वो बड़ा हिट है,
2: हाँ,
1: फिल्मा फुल्मा
2: हाँ,
1: भी आंदी है ना,
2: नहीं
1: वेरी
2: वो
1: गुड।
2: रिलेट मैं इसलिए कर पाई क्योंकि
1: हाँ
2: वो जिस हिसाब से लड्डू जिस स्पीड से
1: हाँ
2: खाता था उस हिसाब से
1: अच्छा
2: ये मोमो खाते
1: ओके ओके, वेरी गुड वेरी
2: थे।
1: गुड। ते अपा एक होर कॉल लैन तो पहला एक मैसेज पढ़ लीजिए। 009 कहंदे ने, मैं दोबारा कहूंगा सर, जे काश थोड़ा 007 होंदा थोनू मैं जेम्स बॉन्ड ना बुला करदा। बहुत प्यारा मोहसिन साहब दा उन्होंने शेर लिख के भेजा है, मेरे हाथों की लकीरों में ये ऐब छिपा है मोहसिन, मैं जिस शख्स को छू लूं वो मेरा नहीं रहता। वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बाता ने। ते आपा छेती छेती ना एक अद्धी कॉल होर लवांगे, ते साडी लाइन इज ओपन, यू गाइज कैन कॉल अगेन अगेन अगेन। 786-786 नंबर एंड जिन्हें आंदा जी, उन्होंने मैसेज है कि हैलो टू बोथ ऑफ यू, वेरी नाइस शो विद लॉट ऑफ वैरायटी, ऑलवेज एंजॉइंग लिसनिंग टू रेडियो। हाँ जी कृष्णा जी, योर वॉइस इज सो सूदिंग, वन कैन लिसन यू ऑल डे, एंड यश जी डिलीवर्ड नाइस हिंदी कंटेंट, रियली नाइस, थैंक यू जी, थैंक यू।

0: इन्हें टेंशन क्यों लेती हुई है?
1: यार की दसा, मॉर्गेज दा काम आज भी नहीं बनया।
0: अज सिमी पैन जी आए सी, उन्होंने अपना मॉर्गेज यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज तो थोड़े टाइम विच ही करवा लेता।
1: अच्छा, असि भी उन्होंने कॉन्टेक्ट कर दिया फिर ता।
0: जेकर थानू भी लोड है होम लोन, रीफाइनेंस, कार लोन या फिर एनी अदर लोन दी, ता आज ही कॉन्टेक्ट करो हरप्रीत सिंह फ्रॉम यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज एट 0430-8833-11 और विजिट uvfinancial.com.au। मिल बंदे साउथ ईस्ट इलाके दे सारे बिल्डर्स ते ब्रिक लेयर्स ले खुशखबरी, तुहाडी हर बिल्डिंग दे स्ट्रक्चर दी एक मजबूत नींव अते दमदार पहचान देन ले आ गए ने ओज लिंटल्स। ओज लिंटल सप्लाई कर देने सारे साइजेस दे गैल्वेनाइज्ड ब्रिक लिंटल, टी बार्स, इक्वल एंड अनइक्वल एंगल्स। असी करा दे विच स्टील फैब्रिकेशन सप्लाई अते इंस्टॉल वी करदे हां। कॉन्टैक्ट 0423-102-900, ईमेल sales@ozlintels.au। ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उन्हां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्यां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24-month प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते।

0: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने, बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au। सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाईबैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स, स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स, 310/2 मेन स्ट्रीट, पॉइंट कुक। कॉल 0493536042।
2: चलदी दा नाम गड्डी, आ ते सुनिया ही होना। ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनु चलाउन ले ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स, अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिना को लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप। टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सोमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 0398-6655 और विजिट tireforce.com.au।
0: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया ZJ स्टोन मेसन, फाड़े करनु बनाए एकदम क्लासी। असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड, मेल्टन।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून.
2: रेडी सेट गो चेस्टन फोर्ड डेंटन ऑन रोड ते तुहानू उड़ीक रहा है फोर्ड रेंजर रेंजर सुपर ड्यूटी एवरेस्ट ते सदाबहार मस्टैंग ब्रांड न्यू डेमो ते क्वालिटी प्री ओन्ड व्हीकल्स ट्रेड इन अते फाइनेंस ऑप्शंस वी अवेलेबल. आओ ते अपनी नवी फोर्ड दा टेस्ट ड्राइव करो बिजनेस फ्लीट लाई गल करो व्हीकल एक्सपर्ट्स टिम फोर्ब्स या कोरी नाल रेडियो हांजी दे हवाले नाल पाओ 3 साल दी फ्री सर्विस. चेस्टन फोर्ड रेडी सेट फोर्ड.
3: की चाहिदा ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे लई मशवरा चाहिदा मिल जुगा सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस. ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा लई एक भरोसे योग ना जो स्टडी वीजा स्किल्ड वीजा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा डामा पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील करदे ने. हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490054596 गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस .com.au ते जाओ. आओ थोड़ा कोई हल करिए.
4: हाँ जी हाँ जी ओए हाँ जी हाँ जी
5: हाँ जी रेडियो.
6: You don't understand, 'cause no one's playing with you. I don't want it.

0: आबाद रखूगा। तू भी मेनू लिखना सिखाया ता करके औजला भी तेनू याद रखूगा, क्योंकि फाकरा दे कोई राह नहीं होंदे ते तेरे वर्गे सजना चंद्रिए भुला नहीं होंदे।
1: हां जी हां जी।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसे भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: बलजीत व्याह वास्ते ज्वेलरी देखन तुन्ना ज्वेलर्स चलिए।
3: यार उना दा डेंडी नॉग वाला स्टोर ना बड़ा ही दूर है।
2: ओ हुन टेंशन नहीं, हुन डेंडी नॉग तो इलावा अपने इलाके सेंट एल्बन्स विच तुन्ना ज्वेलर्स स्टोर खुल गया। ओही भरोसा ते 30 साल तो वध वरियां दा एक्सपीरियंस। रेडीमेड गोल्ड, डायमंड ते सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपा बनवा सकदे हां कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी। तुन्ना ज्वेलर्स 99 मेन रोड वेस्ट सेंट एल्बन्स अते 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट डेंडी नॉग। फॉर मोर इन्फो कॉल 0499-2535-45 ते।
4: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले, दालां, ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार, मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
5: चलदी दा नाम गड्डी, आ ते सुनिया ही होना। ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनु चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स, अलॉय व्हील्स लई याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सुमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 0390-8665 और विजिट tireforce.com.au।
6: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लई कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
7: Orbit Homes अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लई बनाउंदे ने उनां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स Orbit Homes अपने 44 वरियां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो Orbit Homes डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते।
8: की होया, इनी टेंशन क्यों लेती हुई है?
9: यार की दसा, मॉर्गेज दा काम आज भी नहीं बनया।
8: आज सिम्मी पहन जी आए सी, उना ने अपना मॉर्गेज UV फाइनेंशियल सर्विसेज तो थोड़े टाइम विच ही करवा लेता।
9: अच्छा, असी भी उना नु कांटेक्ट कर दे फिर ता।
8: जेकर थानू भी लोड है होम लोन, रीफाइनेंस, कार लोन या फिर एनी अदर लोन दी, ता आज ही कांटेक्ट करो हरप्रीत सिंह फ्रॉम UV फाइनेंशियल सर्विसेज एट 0433-8311 or visit uvfinancial.com.au।

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th of June।
2: मिल बंदे साउथ ईस्ट इलाके दे सारे बिल्डर्स ते ब्रिक लेयर्स ले खुशखबरी, तुहाडी हर बिल्डिंग दे स्ट्रक्चर दी एक मजबूत नींव अते दमदार पहचान देन ले आ गए ने ओज लिंटल्स। ओज लिंटल सप्लाई कर देने सारे साइजेस दे गैल्वनाइज्ड ब्रिक लिंटल, टी बार्स, इक्वल एंड अनइक्वल एंगल्स। असी करा दे विच स्टील फैब्रिकेशन सप्लाई अते इंस्टॉल वी करदे हां। कॉन्टैक्ट 0423-102-900, ईमेल sales@ozlintels.au। सोना चाहिदा,
3: भरोसा चाहिदा,
2: क्वालिटी ते बाईबैक वी चाहिदा, चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493-536-042। किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो, आ गया ZJ स्टोन मेसन, फाड़े करनो बनाए एकदम क्लासी। असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड, मेल्टन। रेडी सेट गो चेस्टन फोर्ड, डेंटिनोंग रोड ते तुहानू उड़ीक रहा है फोर्ड रेंजर, रेंजर सुपर ड्यूटी, एवरेस्ट ते सदाबहार मस्टैंग, ब्रांड न्यू डेमो ते क्वालिटी प्रीओन्ड व्हीकल्स, ट्रेड इन अते फाइनेंस ऑप्शंस वी अवेलेबल। आओ ते अपनी नवी फोर्ड दा टेस्ट ड्राइव करो, बिजनेस फ्लीट लाई गल करो व्हीकल एक्सपर्ट्स टिम फोर्ब्स या कोरी नाल। रेडियो हांजी दे हवाले नाल पाओ 3 साल दी फ्री सर्विस। चेस्टन फोर्ड, रेडी सेट फोर्ड।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दुध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून।
2: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
3: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार। ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
2: तुसे भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
4: की चाहिदा? ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा? मिल जुगा। सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक भरोसे योगना जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील करदे ने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490054596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।
5: बलजीत, ब्याह वास्ते ज्वेलरी देखन तुन्ना ज्वेलर्स चलिए?
6: यार उना दा डेंडी नॉग वाला स्टोर ना बड़ा ही दूर है।
5: ओ हुन टेंशन नहीं, हुन डेंडी नॉग तो इलावा अपने इलाके सेंट एल्बन्स विच तुन्ना ज्वेलर्स स्टोर खुल गया। ओही भरोसा ते 30 साल तो वध वरियां दा एक्सपीरियंस। रेडीमेड गोल्ड, डायमंड ते सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपा बनवा सकदे हां कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी। तुन्ना ज्वेलर्स 99 मेन रोड वेस्ट सेंट एल्बन्स अते 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट डेंडी नॉग। फॉर मोर इन्फो कॉल 0499 2545 45।
7: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 4229058600 और विजिट bansallawyers.com.au।
8: हां जी हां जी,

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून
2: की चाहिदा ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा मिल जुगा सीधे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक भरोसे योगना जो स्टडी वीजा स्किल्ड वीजा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा डामा पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490054596 गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ आओ थोड़ा कोई हल करिए
3: वाओ तेरी सब्जी दे खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है मेनू भी दस दे सीक्रेट
4: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार ना ता इस विच ऑयल ना ही कोई कलर हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है
3: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो visit goldleafdairy.com
5: हां जी हां जी

0: ब्रोकर्स। अपनी इंश्योरेंस की हर लोड ले, याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।
1: रेडी सेट गो। चेस्टन फोर्ड डेंडेनोंग रोड ते तुहानू उड़ीक रहा है। फोर्ड रेंजर, रेंजर सुपर ड्यूटी, एवरेस्ट ते सदाबहार मस्टैंग, ब्रांड न्यू डेमो ते क्वालिटी प्री ओन्ड व्हीकल्स, ट्रेड इन अते फाइनेंस ऑप्शंस वी अवेलेबल। आओ ते अपनी नवी फोर्ड दा टेस्ट ड्राइव करो, बिजनेस फ्लीट लाई गल करो, व्हीकल एक्सपर्ट्स टिम फोर्ब्स या कोरी नाल, रेडियो हांजी दे हवाले नाल पाओ 3 साल दी फ्री सर्विस। चेस्टन फोर्ड, रेडी सेट फोर्ड।
2: की होया, इनी टेंशन क्यों लेती हुई है
3: यार? की दसा, मॉर्गेज दा काम आज भी नहीं बनया।
2: आज सिमी पैन जी आए सी, उन्होंने अपना मॉर्गेज यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज तो थोड़े टाइम विच ही करवा लेता।
3: अच्छा, असि भी उन्होंने कांटेक्ट कर दें फिर ता।
2: जेकर थानू भी लोड है होम लोन, रीफाइनेंस, कार लोन या फिर एनी अदर लोन दी, ता आज ही कांटेक्ट करो हरप्रीत सिंह फ्रॉम यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज एट 0433-8311 और विजिट uvfinancial.com.au।
1: चलदी दा नाम गड्डी, हां ते सुनया ही होना। ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनु चलाउन ले ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स, अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सोमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 0390-8665 और विजिट tyreforce.com.au।

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th of June।
2: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
3: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
2: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
4: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले, दालां, ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। आओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार, मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
5: सोना चाहिदा,
6: भरोसा चाहिदा,
5: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 0493536042।
7: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लई कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
8: हां जी हां जी, ओए

ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उना दे सुपनिआं दा इक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वरियां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ऑर्बिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते।

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th of June.
2: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
3: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार। ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हॉर्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं, बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
2: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com.
4: Ready, set, go! Chadston Ford, Dandenong Road ते तुहानू उड़ीक रहा है। Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest ते सदाबहार Mustang, brand new demo ते quality pre-owned vehicles, trade-in अते finance options भी available. आओ ते अपनी नवी Ford दा test drive करो, business fleet लाई गल करो, vehicle experts Tim Forbes या Corey नाल, radio हांजी रे हवाले नाल पाओ, 10 साल दी free service. Chadston Ford, ready, set, Ford.
5: हाँ जी, हाँ जी।

0: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
1: हाँ, एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
0: उसे बताया क्यों नहीं?
1: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं, वो किसी और को चाहती है।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की हुआ
0: इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
1: काका जी टेंशन छोड़ो फोन चको कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-93
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल
2: रोज रोज शॉपिंग हुंदियां ने पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्हां ने
3: सूरज देवता
2: की मतलब
3: ओ कमलिए सन करंट वालियां तो जद्दा इन्हां ने सोलर पैनल लगवाया ता इन्हां दी सेविंग्स वध गई
2: मैनू नहीं पता आपा भी सोलर पैनल लगवाना है हुणे
3: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल कॉल सन करंट 0448-066-494 ते सालां तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम सन करंट देओ रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की होया
0: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
1: काका जी टेंशन छड़ो फोन चको कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-503-503
0: या 90-77-97-33
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल
2: आ किथे वज गई तेरी गड्डी
3: गड्डी ता ठीक होजू पर इंश्योरेंस वालिया नू लीगल वालिया नू एथे परदेस विच समझाऊंगा किवे
2: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटा च दूर कीती है सिंक स्मैश रिपेयर वालिया ने इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम अते फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते सिंक स्मैश रिपेयर 8 ग्रेस वे रेवन हॉल
4: भैन जी की हाल है पिट दर्द दा
5: जदों दा स्लीप एंड रिलैक्स दा इंडियन स्टाइल रूम वाला गद्दा खरीदया सब कुछ ठीक है थैंक यू एदे बारे दसन लई
4: और सुनो हुन स्लीप एंड रिलैक्स हर तरह दे गद्दियां दे नाल बेड भी बनाउंदे ने स्लीप एंड रिलैक्स दा एक स्टोर लेवेटन नॉर्थ अते दूजा नवा स्टोर ओहंस रोड एपिंग विच भी है मनपसंद गद्दियां अते स्टोरेज बेड खरीदने लई कांटेक्ट करो स्लीप एंड रिलैक्स वेक अप फीलिंग टोटली रेस्टेड सर्च अस ऑनलाइन और कॉल 0433-465-492
6: हां जी हां जी ओए हां जी हां जी
7: हां जी रेडियो

0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाईबैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042। की होया, इनी टेंशन क्यों लेती हो ये?
2: यार की दसा, मॉर्गेज दा काम आज भी नहीं पड़ेया।
0: आज सिमी पैन जी आई सी, उन्होंने अपना मॉर्गेज यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज तो थोड़े टाइम विच ही करवा लेता।
2: अच्छा, असी भी उन्होंने कांटेक्ट कर दिया फिर ता।
0: जेकर थानू भी लोड है होम लोन, रीफाइनेंस, कार लोन या फिर एनी अदर लोन दी, ता आज ही कांटेक्ट करो हरप्रीत सिंह फ्रॉम यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज एट 0433-8311 or visit uvfinancial.com.au। मिल बंदे साउथ ईस्ट इलाके दे सारे बिल्डर्स ते ब्रिक लेयर्स ले खुशखबरी। तुहाडी हर बिल्डिंग दे स्ट्रक्चर दी एक मजबूत नींव अते दमदार पहचान देन ले आ गए ने ओज लिंटल्स। ओज लिंटल सप्लाई कर देने सारे साइजेस दे गैल्वेनाइज्ड ब्रिक लिंटल, टी बार्स, इक्वल एंड अनइक्वल एंगल्स। असी करा दे विच स्टील फैब्रिकेशन सप्लाई अते इंस्टॉल भी करदे हां। कॉन्टैक्ट 0423-102-900, ईमेल sales@ozlintels.au।
3: हां जी हां जी, ओए हां जी हां जी,
4: हां जी रेडियो।

जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने, बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au। Orbit Homes अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उना दे सपने आदा एक मजबूत कर। House and Land Experts Orbit Homes अपने 44 वरियां ते तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% fixed price guarantee with an industry leading 24 month price lock। अज ही पहुंचो Orbit Homes Display Centers या कॉल करो हरपन चौहान नो 0433-280-252 04332802522 किचन दा स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया ZJ स्टोन मेसन, पार्टी करनो बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 Collins Road, Melton।

0: ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੀਆਰ ਦੀ ਰਾਹ ਵੀ ਵਿਖਾਈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਏਟੀ ਅਪੀਲਸ, ਸਕਿਲਡ ਵੀਜ਼ਾ, ਪੀਆਰ, ਯੂਐਸ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ।
1: ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਦੇ ਬਾਂਸਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ।
0: ਹਾਂਜੀ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 0406-660-960 ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ bansalimmigration.com.au।
2: Ready, set, go! Chadston Ford, Dandenong Road te tuhanu udik reha hai. Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest te Sadabahar Mustang, brand new demo te quality pre-owned vehicles, trade-in ate finance options we available. Aao te apni navi Ford da test drive karo. Business fleet lai gal karo. Vehicle experts, Tim Forbes ya Corey Nal. Radio Hanji reha wale nal pao. 3 saal di free service. Chadston Ford, ready, set, Ford. Orbit Homes अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उना दे सपने आदा एक मजबूत कर। House and Land Experts Orbit Homes अपने 44 वरियां ते तजुर्बे नाल थानु दिंदे ने 100% fixed price guarantee with an industry leading 24 month price lock। अज ही पहुंचो Orbit Homes Display Centers या कॉल करो हरपन चौहान नो 0433-280-252 ते 0433-280-252 ते। किचन दा स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया ZJ स्टोन मेसन, तुहाडे घर नूं बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओह वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलीगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन। सोना चाहिदा,
3: भरोसा चाहिदा,
2: क्वालिटी ते बायबैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ वी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493-536-042।
4: रोज रोज शॉपिंग हुंदिया ने, पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्हां ने।
5: सूरज देवता
4: की मतलब?
5: ओ कमलिए, सन करंट वालियां तों जद्दा इन्हां ने सोलर पैनल लगवाया ता इन्हां दी सेविंग्स वध गई।
4: मैनू नहीं पता, आपां भी सोलर पैनल लगवाना है हुणे।
5: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल। कॉल सन करंट 0448-066-494 ते। सालां तों बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम, सन करंट। देओ रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी।
6: की होया, इनी टेंशन क्यों लेती हुई है?
7: यार की दसा, मॉर्गेज दा काम आज भी नहीं बनया।
6: आज सिमी पहन जी आए सी, उना ने अपना मॉर्गेज यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज तो थोड़े टाइम विच ही करवा लेता।
7: अच्छा, असी भी उना नु कांटेक्ट कर दिया फिर ता।
6: जेकर थानु भी लोड है होम लोन, रीफाइनेंस, कार लोन या फिर एनी अदर लोन दी, ता आज ही कांटेक्ट करो हरप्रीत सिंह फ्रॉम यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज एट 0433-8311 or visit uvfinancial.com.au।
8: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नु उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले, दालां, ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार, मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानु वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
9: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
10: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
9: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रॉस स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
11: बलजीत, ब्याह वास्ते ज्वेलरी देखन तुन्ना ज्वेलर्स चलिए।
12: यार उना दा डेंडीनोंग वाला स्टोर ना बड़ा ही दूर है।
11: ओ हुन टेंशन नहीं, हुन डेंडीनोंग तो इलावा अपने इलाके सेंट एल्बन्स विच तुन्ना ज्वेलर्स स्टोर खुल गया। ओही भरोसा ते 30 साल तो वध वरियां दा एक्सपीरियंस। रेडीमेड गोल्ड, डायमंड ते सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपा बनवा सकदे हां कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी। तुन्ना ज्वेलर्स 99 मेन रोड वेस्ट सेंट एल्बन्स अते 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट डेंडीनोंग। फॉर मोर इन्फो कॉल 0499-2535-45 ਤੇ।
3: ਭੈਣ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦਾ?
9: ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਲੀਪ ਐਂਡ ਰਿਲੈਕਸ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਰੂਮ ਵਾਲਾ ਗੱਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ।
11: ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਸਲੀਪ ਐਂਡ ਰਿਲੈਕਸ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈੱਡ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਲੀਪ ਐਂਡ ਰਿਲੈਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਲੈਵਟਨ ਨਾਰਥ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨਵਾਂ ਸਟੋਰ ਓਹਨਸ ਰੋਡ ਐਪਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਮਨਪਸੰਦ ਗੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਬੈੱਡ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸਲੀਪ ਐਂਡ ਰਿਲੈਕਸ। ਵੇਕ ਅਪ ਫੀਲਿੰਗ ਟੋਟਲੀ ਰੈਸਟਡ। ਸਰਚ ਅਸ ਆਨਲਾਈਨ ਔਰ ਕਾਲ 0433-465-492।
13: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ।

0: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नूं उनां दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसीं एथे इंडियन मसाले दालां ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
1: की होया इनी टेंशन क्यों लेती हुई है
2: यार? की दसा मॉर्गेज दा काम आज भी नहीं बनया।
1: आज सिमी पहन जी आए सी उन्होंने अपना मॉर्गेज यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज तो थोड़े टाइम विच ही करवा लेता।
2: अच्छा असी भी उन्होंने कांटेक्ट कर दिया फिर ता।
1: जेकर थानू भी लोड है होम लोन रीफाइनेंस कार लोन या फिर एनी अदर लोन दी ता आज ही कांटेक्ट करो हरप्रीत सिंह फ्रॉम यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज एट 0430-8383-11 और विजिट uvfinancial.com.au।
0: Ready, set, go! Chadston Ford, Dandenong Road ते तुहानू उड़ीक रहा है। Ford Ranger, Ranger Super Duty, Everest ते सदाबहार Mustang, brand new demo ते quality pre-owned vehicles, trade-in अते finance options भी available। आओ ते अपनी नवी Ford दा test drive करो, business plate लाई गल करो, vehicle experts, Tim Forbes या कोरी नाल, Radio हांजी दे हवाले नाल पाओ, 10 साल दी free service। Chadston Ford, ready, set, Ford।
1: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू प्रॉपर्टी दा मसला कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने बंसल लॉयर्स तुहाडा भरोसा साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 4229058 60 और विजिट bansallawyers.com.au।

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून.
2: If you can understand when I start Punjabi vich bolna, ta tusi Victoria Police vich naukri karan layi us ton vi vadh yog ho jinna tusi sochde ho. Vadhiya shuruati tankha naal shuru karo ate naukri dauran duji bhasha di varto karke patte kamao. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: Orbit Homes अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक ले बनाउंदे ने उना दे सुपनियां दा एक मजबूत कर. House and Land Experts Orbit Homes अपने 44 वरियां ते तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% fixed price guarantee with an industry leading 24 month price lock. अज ही पहुंचो Orbit Homes Display Centers या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते
4: 04-43-280-252 साल तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम सन करंट दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट.

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555 गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।
1: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com।
3: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ।

चढ़ के असी लड़ांगे साथी। कतल होए जज्बियां दी कसम खा के, बुझियां होईयां नजरां दी कसम खा के, हत्थां ते पए रटना दी कसम खा के, असी लड़ांगे साथी। असी लड़ांगे तद तक के वीरू बकरियां वाला जदों तक बकरियां दा मूत पींदा है, खिड़े होए सरों दे फुल्लां नू जदों तक वाहण वाले आप नहीं सुंघदे, के सुजियां अखां वालियां पिंड दी अध्यापिका दा पति जदों तक जंग तों परत नहीं आउंदा, जदों तक पुलिस दे सिपाही अपने ही भरावां दा गला कुट्टन ते बाद खान, के बाबू दफ्तर वाले जदों तक लहू दे नाल हरफ पौंदे ने, असी लड़ांगे जद तक दुनिया च लड़न दी लोड़ बाकी है। जदों बंदूक ना हुई उदों तलवार होवेगी, जदों तलवार ना हुई लड़न दी लगन होवेगी, लड़न दी जाच ना हुई लड़न दी लोड़ होवेगी। असी लड़ांगे साथी, असी लड़ांगे के लड़न बाजों कुछ भी नहीं मिलता, असी लड़ांगे के हाले तक लड़े क्यों नहीं, असी लड़ांगे अपनी सजा कबूलन लई। लड़के मर चुकियां दी याद जिंदा रखन लई असी लड़ांगे साथी, असी लड़ांगे। ये कविता सिर्फ शब्द नहीं सी, ये उस पीढ़ी की धड़कन सी। उस वेले पंजाबी साहित्य विच बहुत कुछ प्यार रोमांस ते दर्द बारे लिखा जा रहा सी, पर पाश ने लिखा मजदूर बारे, किसान बारे, सिस्टम दे खिलाफ, डर दे खिलाफ, ते उसकी ये आवाज हकूमत नूं पसंद नहीं आई। उस उत्थे झूठा कतल दा केस लाया गया, वह जेल विच वी रहा, पर पाश दी सब तो वड्डी गल की है पता, वह डरिया नहीं। अते सिस्टम नूं सब तो वध डर बेडर लोकां तों ही लगता है। जरा सोचो, एक नौजवान मुंडा, एक कवि, उसके हाथ विच बंदूक नहीं, उसके हाथ विच सिर्फ कविता सी, उस तो भी लोग डर गए। क्यों? क्योंकि शब्दां विच बहुत ताकत हुंदी है। क्यों? क्योंकि सच दी आवाज हमेशा खतरनाक लगती है। उन्हें जेल विचों भी बहुत सारियां कवितावां लिखियां, ते उन्हां दे विचों एक कविता का नाम है जेल। लिखते नहीं उन्हां नूं रिहा एक भुलेखा कि जिंदरे च डक देणगे, उन्हां नूं रिहा एक भुलेखा कि जिंदरे च डक देणगे, गुस्ताख पलां दी बेजसम होंद, कंधां उसार देणगे सड़कां दियां हिक दे, रोशनी दे कई वरे बदल दे नाल नाल तुरे, रुत मगरों रुत नूं कोई रोक नहीं सकिया, सिर्फ छत्तां ते झूलदा रहा चोरा उन्हां पलां दा, जिन्हां तीरां दियां नोकां ते पलना सी, चोरा उन्हां पलां दा जिन्हां तीरां दियां नोकां ते पलना सी। इसे दौरान उन्होंने एक होर कविता लिखी, कविता दा सिरलेख है पुलिस ते सिपाही नूं। लिखते ने, मैं पिछे छड़ आया हाँ समुंदर रोंदियां पैना, मैं पिछे छड़ आया हाँ समुंदर रोंदियां पैना, किसे अनजाने पै अंदर जरक दी बाप दी दाड़ी, ते सुखना सुख दी खांदी गशा मासूम ममता नू, मेरे खुरली ते बद्दे हुए डंगर बेजाना नू, किसे

हाँ जी, तुसीं सुन रहे सी पाश पाश दी जिंदगी ते उसियां रचनावां बारे। आस करदी हां कि तुहानूं अज दा शो पसंद आया होएगा, क्योंकि कवि कदे मरदे नहीं, ओह लोकां दी याद विच वस जांदे नहीं।

Kumma vaag fakira, vaag main fakira, vaag main fakira. Sorry for my poor voice, but say thank you to me for my amazing, impeccable song choice. क्या बात है, काश कोई नो रिकॉर्ड कर, अच्छा रिकॉर्ड तो हो रहा है, मेरा भी कोई हाल नहीं. खैर, वेलकम बैक, दिस इज कृष्णा एंड यू आर लिसनिंग टू क्या बात है. आज मैं क्या बात है, वैसे मैं आज क्या बात है बोलना ही भूल गया शो द स्टार्टिंग. सो भाई हाँ जी, असी क्या बात है दे नाल जुड़ चुके हैं. आप पहले सैगमेंट के अंदर गलबात की संक कॉस्ट फैलेसी बारे, जिदा मतलब हुंदा कि आप किसी रिलेशनशिप, जगह, लोक, ऑर्गेनाइजेशन, पैसा, इन्वेस्टमेंट, फलाना टमीका एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, इन्हों सारिया चीज़ों उपर इन्वेस्ट करते रहने हैं क्योंकि असी पहले इन्वेस्ट करते आ रहे थे. सानू पता हुंदा कि इस चीज़ दे अंदर सिर्फ फेलियर है कि जे असी इज्जत चाहते हो सामने हो तो इज्जत नहीं मिलनी, जे असी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहते अपने पैसे की तो वह नहीं मिलनी, तो जे आप प्यार शायद भालते पे हैं सामने कि जिस तरह का असी दे रहे हो उस तरह का वह भी नहीं मिलना, कि सानू पता वापसी कोई नहीं, फिर भी असी खर्चा करते रहने. क्यों? क्योंकि साढ़े माइंड ने सानू ट्रेन किया कि जे आप एक बारी एक चीज़ करती है नजिठ ली है वह दोबारा दोबारा करते रहना, है ना. तो जी हूँ आप अगे इस सिलसिले को वधावे, तो आप हूँ अगे गलबात यह करा कि भाई ये जी कंसैप्ट है, जोड़ा भी कंसैप्ट लिया साढ़े आह ओहायो च रहन वाले अपना बंदिया ने आर्कस एंड ब्लूमर ने, उन्होंने किस तरह की केस स्टडी की जिस तो उन्होंने पता लगा, है ना. सो मैं थोड़े ना रियल लाइफ केस स्टडीज़ भी दस दिना जिस तो जिस तरह उन्होंने रिसर्च की. पहले का नाम उन्होंने रखिया जी द थिएटर टिकट एक्सपेरीमेंट. जी वो अंदर की किया उन्होंने सेम नंबर ऑफ पीपल लैके तीन वक्रो वक्रे ग्रुप बनाए. पहले ग्रुप नू क्या जी कि यह ना अज इस सीजन दे टिकट सगियां $15 दियां मूवी थिएटर दे, ते इहदे अंदर कह लो तुसी 5 शो वेख सकते हो $15 च, ठीक है. दूसरे नू $13 दी दित्ती हो टिकट, दस्या कि भाई आ जिहड़ी $13 वाली टिकट है ना तेरी आह वाली, इहदे अंदर तू सेम उन्ने शो देख सकदा जिन्ना 15 वाले ने कीते, तू खर्च पैसे पर तू सारे वेखने आ. उह कहिंदा ठीक है भाई. फिर बाद चो जो तीसरे की गल हुई तो फिर तीसरा सीगा जी कि ग्रुप सी, ग्रुप सी नू उन्होंने दिता $8, ठीक है. सो पहले नू दिता 15, दूसरे नू 13, तीसरे नू 8, इन्हां नू इन्ने इन्ने दियां टिकटां वेचियां सेम नंबर ऑफ शोज़ इको थिएटर दे अंदर देखने लिए वक्खो वक्री फिल्मा दे. जवाब की आया जी, जवाब यह आया कि जिहड़ा ग्रुप ए सी जिन्हें सब तो ज़्यादा महंगी टिकटां खरीदियां उन्होंने ही सब तो ज़्यादा वो शो वेखे क्योंकि देवर लाइक कि असी बहुत पैसा खर्चा, है ना. तो जिहड़ा ग्रुप सी सी उन्होंने उस टाइम उठना सही मनिया जो उन्होंने दसिया कि हूँ ये सारी बोरिंग फिल्मा ने, ये फॉरन लैंग्वेज दियाँ फिल्मा, असी तो इंग्लिश बोलना जानते हैं, असी नहीं सब टाइटल पढ़ के भाई इटालियन फिल्म वेखनी, है ना. तो वो लोग कहें कि बाय बाय टाटा टेक केयर. इस तो यह साबित होंगे कि क्योंकि मेरे पैसे वध लगे हैं, मैं शायद अपने लाइफ दे कीमती घंटे कीमती वक्त बर्बाद कर देव, तो वो सिर्फ इस कारण क्योंकि पैसे वध लगे हैं. जो उस ही चीज़ में पैसे घट दते हो गए, है ना, तो शायद मैं इन्नी ज़्यादा उस चीज़ को तवज्जो या इज्जत ना देव. एक होर कंसैप्ट आता

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसे भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: ओपिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लई बनाउंदे ने उना दे सुपनियां दा एक मजबूत घर। हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ओपिट होम्स अपने 44 वर्षां दे तजुर्बे नाल थानू दिंदे ने 100% फिक्स्ड प्राइस गारंटी विद एन इंडस्ट्री लीडिंग 24 मंथ प्राइस लॉक। अज ही पहुंचो ओपिट होम्स डिस्प्ले सेंटर्स या कॉल करो हरपन चौहान नू 0433-280-252 ते 0433-280-252।
3: टेंशन मेरी टेंशन
4: की होया
3: एथे इमीग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
4: काका जी टेंशन छड़ो फोन चको कॉल करो वीवाई इमीग्रेशन नू जिथे इमीग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
3: या 90-77-97-33
4: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
3: याद रखो 9077-9733
4: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
3: हर कदम तुहाडे नाल।
5: बलजीत व्याह वास्ते ज्वेलरी देखन तुन्ना ज्वेलर्स चलिए
6: यार उना दा डेंडी नॉग वाला स्टोर ना बड़ा ही दूर है।
5: ओ हुन टेंशन नहीं हुन डेंडी नॉग तो इलावा अपने इलाके सेंट एल्बन्स विच तुन्ना ज्वेलर्स स्टोर खुल गया ओही भरोसा ते 30 साल तो वध वरियां दा एक्सपीरियंस। रेडीमेड गोल्ड डायमंड ते सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपा बनवा सकदे हां कस्टमाइज्ड ज्वेलरी वी। तुन्ना ज्वेलर्स 99 मेन रोड वेस्ट सेंट एल्बन्स अते 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट डेंडीनोंग। फॉर मोर इनफो कॉल 0499-2535-45 ते।
7: किचन द स्टाइल डल लगदा बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया हुन टेंशन खत्म करो आ गया ZJ स्टोन मेसन पाड़े करनु बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
8: रोज रोज शॉपिंग हुंदियां ने पता नहीं केड़ा देवता राजी कीता इन्होंने।
9: सूरज देवता
8: की मतलब
9: ओ कमलिए सन करंट वालियां तो ज्यादा इन्होंने सोलर पैनल लगवाया ता इन्ना दी सेविंग्स वध गई।
8: मैनू नहीं पता आपा भी सोलर पैनल लगवाना है हुणे।
9: तुसी भी करो बचत ते लगवाओ सोलर पैनल। कॉल सन करंट 0448-066-494 ते। साला तो बेस्ट सर्विस लई एक ही नाम सन करंट। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ $200 दा डिस्काउंट भी।
10: की चाहिदा ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे लई मशवरा चाहिदा मिल जुगा। सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा लई एक भरोसे योगना जो स्टडी वीजा स्किल्ड वीजा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा डामा पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील करदे ने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490-054-596 गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ आओ थोड़ा कोई हल करिए।

0: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नूं उनां दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले दालां ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। आओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394 दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
1: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
3: हां जी हां जी,

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की हुआ
0: थे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे नहीं
1: काका जी टेंशन छोड़ो फोन चको कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-93
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल
2: ऑर्बिट होम्स अपने इरादियां वांग सिर्फ इमारत नहीं बल्कि अपने हर एक ग्राहक लई बनाउंदे ने उनां दे सुपनियां दा एक मजबूत घर हाउस एंड लैंड एक्सपर्ट्स ऑर्बिट होम्स अपने 44 वर्यां दे तजुर्बे नाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 100% ਫਿਕਸਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਗਾਰੰਟੀ ਵਿਦ ਇਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੀਡਿੰਗ 24 ਮੰਥ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੌਕ ਅੱਜ ਹੀ ਪਹੁੰਚੋ ਆਰਬਿਟ ਹੋਮਸ ਡਿਸਪਲੇ ਸੈਂਟਰਸ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਹਰਪਨ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ 0433-280-252 ਤੇ 0433-280-252 ਤੇ

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक माल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

होके मेरे रूबरू एनू लगदा तबाही तेरा हर एक व्यू ऐदा वेखे मैनू तू होके मेरे रूबरू एनू लगदा तबाही तेरा हर एक व्यू।

0: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपनी हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले दालां ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
1: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
2: की होया
1: एथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
2: काका जी टेंशन छड्डो फोन चको कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
1: या 90-77-97-33
2: या ईमेल info@vyimmigration.com.au।
1: याद रखो 9077-9733
2: VY Immigration and Education Consultant
1: हर कदम तो आड़े नाल।
3: हाँ जी।

0: ज्वेलरी देखन तुन्ना ज्वेलर्स चलिए
1: यार उना दा डेंडी नॉग वाला स्टोर ना बड़ा ही दूर है
0: ओ हुन टेंशन नहीं हुन डेंडी नॉग तो इलावा अपने इलाके सेंट एल्बन्स विच तुन्ना ज्वेलर्स स्टोर खुल गया ओही परोसा ते 30 साल तो वध वरियां दा एक्सपीरियंस रेडीमेड गोल्ड डायमंड ते सिल्वर ज्वेलरी दे नाल नाल आपा बनवा सकदे हां कस्टमाइज्ड ज्वेलरी भी तुन्ना ज्वेलर्स 99 मेन रोड वेस्ट सेंट एल्बन्स अते 341 लॉन्सडेल स्ट्रीट डेंडी नॉग फॉर मोर इन्फो कॉल 0499 2535 45 ते

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक माल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: हाँ जी हाँ जी ओए हाँ जी हाँ जी
3: हाँ जी रेडियो

ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस, शर्ता लागू।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हां जी हां जी, ओए हां जी हां जी,
3: हां जी रेडियो।

एक बार जो तुद पावे साई पली का, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पाक सार, असंख मोन लिव लाए तार, कुदरत कौन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवट हत्या कुमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कुड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेच मल पाक खाए।

जो तुद पावै साई पलिका, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कै सिर पार होए, अखरी नाम अखरी सालाह।

जो तुद पावे साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, भरिए हाथ पैर तन दे पानी तोता पुत्र सखे, मूत पलीती कपड़ होए दे साबुन लइए ओ तोए, परिए मत पापा कै संग, ओ तोपै नावे के रंग, पुन्नी पापी आखन नाए, कर कर करना लिख ले जाओ, आपे बीज आपे ही खाओ, नानक हुक्मी आवो जाओ। तीर्थ तप दया दत दान, जे को पावे तिलका मान, सुनिया मनिया मन कीता पाओ, अंतर गत तीर्थ मल नाओ, सब गुण तेरा मैं ना ही कोय, विन गुण कीते भगत ना होए, स्वस्थ आत बाणी परमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ, कवन सुवेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार, कवन सिर उत्ती मां कवन, जित हुआ आकार, वेल न पाया पंडती जे होवे लेख पुराण, वक्त न पाया का दिया जे लिखन ले कुरान, हितवार ना जोगी जाने, रुत महा ना कोई, जां करता सिर ठीको साजे, आपे जाने सोई, केव कर आखा केव सलाही, क्यों वरनी केव जाना, नानक आखन सब को आख है, एक दू एक सियाना, वड्डा साहेब वड्डी नाई, कीता जा का होवे, नानक देखो आपो जाने, अगे गया न सो है, पाताला पाताल लख आकाशा आकाश, ओड़क ओड़क पाल थके, वेद कहन एक वात, सेंस अठारा कहन कतेबा, असलू एक तात, लेखा होए तां लिखिया, लेखे होए विनाश, नानक वड्डा आखिया, आपे जाने आप, साला ही साला, एती सुरत न पाईया, नदियां अत्ते वाह, पवे समुंद न जानिया, समुंद सा सुल्तान, गिरिया सेती माल तन, कीड़ी तुल न होनी, जेत मनो न विसरे, अंत न सिफती कहन न अंत, अंत न करने दे न अंत, अंत न वेखन सुन न अंत।

पाए जाए। ए अंत न जाने कोए, बहुता कहिए बहुता होए, वड्डा साहेब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ। ए वड़ ऊंचा होवे कोए, तिस ऊंचे को जाने सोए, जे वड़ आप जाने आप आप। नानक नदरी करमी दात, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तुमाए, केते मंगे जोत अपार, केत्या गंत नहीं विचार, केते खप टुटे वेकार, केते लैलै मुकर पाहे, केते मूर्ख खाई खाए, केतिया दुख भूख सदमार। ए भेदात तेरी दातार, बंद खलासी पाने होए, और आख न सके कोए, जे को खाएक आखन पाए, ओ जाने

तीरे सुनियार, अहरन मत वेद हथियार, पौ खला अगन तपताओ, पांडा पाओ अमृत तित काल, करिए शब्द सची टक।

एक ओंकार सतगुरु प्रसाद जाप श्रीमुख वागपात सही दसवीं छपे चंतो प्रसाद चक्र चेनी हर वर्ण जाति हर पात निंजय रूप रंग हर रेख पे को कह न सकत कह अचल मूर्त अनुभव प्रकाश संतोष कह जय कोट इंद्र इंद्रान सा सहान गणित जय तिर भवन में सुर नार्य सुर नेत नेत मंत्र कहत तब सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण सुमत जांग प्रिया छंद नमस्तंग अकाले नमस्तंग कृपाले नमस्तंग रूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंग अभेखे नमस्तंग अलेखे नमस्तंग अकाये नमस्तंग अजाये नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अभंजे नमस्तंग अडामे नमस्तंग अठामे नमस्तंग अकर्मंग नमस्तंग अतर्मंग नमस्तंग अनामंग नमस्तंग अतामंग नमस्तंग अजीते नमस्तंग अभीते नमस्तंग अभाये नमस्तंग अडाये नमस्तंग अनिले नमस्तंग अनादे नमस्तंग अछेदे नमस्तंग अगाजे नमस्तंग गंजे नमस्तंग भंजे नमस्तंग उदारे नमस्तंग अबारे नमस्तंग सुएक नमस्तंग अनेक नमस्तंग अभूते नमस्तंग अजूपे नमस्तंग निर्कर्मे नमस्तंग निर्भर्मे नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निर्भेशे नमस्तंग निर्नामे नमस्तंग निर्कामे नमस्तंग निर्धाते नमस्तंग निर्घाते नमस्तंग निर्दूते नमस्तंग अभूते नमस्तंग अलोके नमस्तंग अशोके नमस्तंग निर्तापे नमस्तंग अथापे नमस्तंग त्रिमाने नमस्तंग निदाने नमस्तंग अगाये नमस्तंग अबाये नमस्तंग त्रिवर्गे नमस्तंग असर्गे नमस्तंग प्रभोगे नमस्तंग संयोगे नमस्तंग अरंगे नमस्तंग अभंगे नमस्तंग अगमे नमस्तरमे नमस्तंग जलाशय नमस्तंग निराशय नमस्तंग अजाते नमस्तंग अपाते नमस्तंग अमजवे नमस्तस्त अजवे अदेशंग अदेशे नमस्तंग अभेशे नमस्तंग नितामे नमस्तंग निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वद्याले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभू नमो सर्व खापे नमो सर्व थापे नमो सर्व काले नमो सर्व पाले नमस्तस्तु देवे नमस्तंग अभेवे नमस्तंग अजन्मे नमस्तंग सुबन्मे नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे नमो सर्व रंगे नमो सर्व पंगे नमो काल काले नमस्तस्तु द्याले नमस्तंग अवर्णे नमस्तंग अमरणे नमस्तंग जरारंग नमस्तंग कृतारंग नमो सर्व दंदे नमो सत वंदे नमस्तंग निर्साके नमस्तंग निर्भाके नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते नमस्तत रागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्व सोखं नमो सर्व पोखं नमो सर्व कर्ता नमो सर्व हर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले चात्री चांतो प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अभू है अलेख है अभेक है अनाम है अकाम है अदय है अभय है अजीत है अभीत है त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अभूत है अभर्ण है अगंज है अभंज है अजूज है अजंज है अमीक है रफीक है अदंध है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अला है अजा है अनंत है महंत है अलीक है निरश्रीक है निर्लभ है असंभ है

अनंगी अनाते नरसंगी परमाते नमो पान बाने नमो मान माने नमो चंद चंद्रे नमो पान बाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो निरत निरते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे परमंगी परमाते समस्ती प्रभूते कलंक विनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजे सवरंग परम रूपे नमो जोग जोगे सवरंग परम सिद्धे नमो राज राजे सवरंग परम बिरदे नमो शस्त्र पाने नमो अस्त्र पाने नमो ब्रह्म ज्ञाता नमो लोक माता वेखी अवरमी अभोगी अभुक्ते नमो जोग जोगे सवरंग परम जुगते नमो नित नारायण गुगुर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साहंग नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान मानंग नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सच्चिदानंद सर्वमुक्त प्रणाशी अनूपे अरूपे समस्तल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बिरध करदा अधो उर्ध अर्धंग अगग उग हरता परंग परम परमेश्वरंग प्रोच पालंग सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयारंग अछेती अपेदी अनामंग अकामंग समस्तो पराजी समस्तस्त तामंग तेरा जोर चातुरी छंद जलय है थलय है अभीत है अभय है प्रभु है अजू है अदेश है अवेश है प्रियांग पुरा छंद गादे अबादे आनंदी स्वरूपे नमो सब माने समस्ति निदाने नमस्तंग निनाथे नमस्तंग परमाते नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अभंजे नमस्तंग अकाले नमस्तंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साहे नमो माय माय नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो सर्व तानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व मंत्रंग।

आग जात्र तात्र दिशा विशा हुए फैल्यून राग नाम काम बहिन पेख ताम हो न जाए सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मानुताए एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव न जानी जय बेदर्क तेव रूप रंग न जात पासो जानी कह जेव तात मात न जात जाकर जन्म मर्म हीन चक्र बकर फिरे चतर चक मान ही पुरती लोक चौदह के बिखे जग जाप ही जय जाप आद देव अनाद मूर्त थाप्य सब जय थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रस्तियों सुजम्बव गण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म ताम सो परम रहत अभूत अलख अभेद अंग राग न रंग जाके जात बात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुकुदाय काम आव रूप अमीक अनुस्तुत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत अंगहीन अभांग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपाल सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपे सर्व शास्त्र जानी जय रूप रंग रेख परम वेद पुराण जाके नेत पागत नेत कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आवे ही वो चित मदभार छंद तो प्रसाद गुण गानुदार मैं माया पार आसान अभंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस्दिन अना

कालानकान अनुभूत अंग अभावंगत मित पार गुण गण उदार मुन गण बरनाम निर्भय निरकाम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड आलक्ष आदिष्टे तरम सर्वां वर्णांडिये अंडंड भांडिये चाचरे चंतो प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंकरियम निर्नामे अकामे यंग प्रिया छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र जानिए चाचरी छंद न सत्रे न मित्रे न परमंग न पित्रे न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्रे न मित्रे पर है पवित्र प्रतिशय अधीरशय अदृशय अकृशय भगवती छंतो प्रसाद कथते के आछे जदेशय के आभिज भेषय के आगाज कर्मय के आभंज भरमय के आभिज लोक के आदित शोक के अवधूत वर्णय के बेपूत करणय के राजम प्रवाह के धर्मंग तुजा है के आशोक वर्णय के सर्वा अवर्णय के जगतंग कृति हैं के छत्रंग छत्री हैं के ब्रह्मंग स्वरूपे के अनुपव अनुपे के आद अदेव हैं के आप अभेव हैं के चक्रंग बहीन है के एक अधीन है के रोजी रजा कह रही में रहा कह के पाक बेअब है के गैबिल गैब है के अफल गुना है के साहल सुना है के कारण कुनंद है के रोजी दहंद है के राज रहीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मानिय के सर्वत्र दानिय के सर्वत्र गौणे के सर्वत्र पौणे के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पैसे के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र भाव के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पैसे के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी की सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजय के सर्वत्र राजय के सर्वत्र शोक है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देश के सर्वत्र पेश के सर्वत्र मानिय सदैव प्रदान।

नहीं है कि सरबत जापिया कि सरबत्र थापिया कि सरबत्र पाने कि सरबत्र माने कि सरबत्र इंद्रा कि सरबत्र चंद्रा कि सर्वंग कलीमय के परमंग फहीम है कि अकाल अलाम है कि साहिब कलाम है कि हुसन वजू है तमाम रजू है हमेशा सलाम है सली खुदमदाम है गनी बुल शिकस्ते गरीब उल परस्ते बुलंदर मुकाने जमीन उल जुमाने तमीज़ुल तमाम रजूअल निदान हरीफुल अजीम रजाय यकीन अनेकल तरंग है अभेद है अभंग है अजीज़ुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरका स्वरूप है त्रिमुक्त भूत है प्रभगत प्रभा है सो जुग सुदा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तल सलाम है सदैवल कलाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आदरूप है अनाद स्वरूप अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिका में त्रिभर्गन त्रिभादे अगजे अगाधे सुभंग स्वरूपागे सुसर्वान रागे त्रिपुगत स्वरूप है अच्छे जय छूत है कि नरकम परनाश है पृथ्वी परवास है निरकत परवा है सदैव सदा है बेपुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है निरकत सदा है बेपुगत परवा है अनुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है चाचरी छंद अभंग है अनंग है अभेक है अलेख है अभर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अधूत है अनास है उदास है अधंध है अभंध है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है अनचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलेख है अभेक है अडा है अगा है असंभ है अभंग है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजात है चारपण चंतो प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग कर्मंग सर्वंग धर्मंग सर्वंग जुक्ता सर्वंग मुक्ता रुआल चंद तो प्रसाद नमो नरगनासे सदैव प्रगासे अनंग स्वरूपे अभंगम भूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निर्साग शरीक है अमितो अमेक है सदैव परवा है अजय है अजा है भागवती छंद तो प्रसाद के जाहिर जहूर है के हाजर हजूर है मेशल सलाम है समस्तल कलाम है के साहिब दिमाग है के उसने चराग है के कामल करीम है के राज करीम है के रोजी दहंद है के राज करहंद है करीमुल कुमाल है के हुसन जमाल है गनीमुल खराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल शकन है हिरासल फकन है कलंकम परनास है सुमस्तल निवास है अगंजल गनीम है रजायक रहीम है सुमस्तल जुबा है के साहिब के राह है के नरकम परनास है बिस्तल निवास है के सर्वल गवन है के हमेशल रवन है तमाम तमीज है समस्त अदीस है परंग परंग ईस है समस्त अदीस है अदेसल अलेख है अभेसल अभेक है जमीन जुमा है अमी कुमा है करीमल कुमाल है गजुर जमाल है के अचलंग प्रकाश है कृमित्व सुभाष है के अजब स्वरूप है।

गुणगन मुदाम हर बर अगंज हर नर प्रभंज अन गण प्रणाम मुन मन सुनाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनभव अनास मुन मन प्रगास गुणगन प्रणाम जलथन मुदाम अनछिज अंग आसान अभंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिसविस अभंड जल थल महंत दिसविस बेअंत अनपौ अनास त्रित तर तुरास आजान वा एक सदा ओंकार आदि कथनी अनाद खल।

अंठन अबार आडीठ तरम अत ठीठ करम अन बरन अनंत दाता मंत हर बोल मना शांतो प्रसाद करनाले है अर काले है कल खंडल है मैं मंडल है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व वारण है धृत के तरण है जग के करण है मनमानीय है जग जानीय है सर्वंकार है सर्वंकार है सर्वपाशी है सर्वनाशी है करुणाकर है विश्वम्भर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है परते पर है करुणाकर है अजपाजप है अतपात्व है अकृताकृता है अमृतामृता है अमृतामृता है करुणाकृत है अकृताकृत है तरणीतृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नर नायक है कलघायक है विश्वम्बर है करुणालय है निर्म नायक है सर्वपायक है पाव पंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जब जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ताकर है हरताहर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है प्रियांग प्रिया छंद नमो सूर सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बिंदे नमो बीज बीजे नमो राज संताम संक्षात रूपे नमो परंग ततंग अतंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो त्यान त्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पोज पोजे नमो पान पाने नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्र अनादंगूते कलंकार रूपे अकलंकार लंके नमो आसे आसे नमो भांग भंके अभंगी स्वरूपे अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी कामे एक अश्री छंद अजय अलय अभय अभय अभू अजू अनास अकाश अगंज भंज अलख पख अकाल दयाल अलेख अभेख अनाम अकाम अगा अडा अनाथे परमाथे अजूनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अभर्मंग अगजे अलेखे प्रियांग प्रजा छंद नमस्तुल प्रणामे सुमस्तर प्रनासे अगंजन अनामे सुमस्तल निवासे निर्कामंग बभूते सुमस्तंग स्वरूपे कुकर्मंग प्रनासी सुतर्मंग प्रभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रनासी करीमल कुरंदा सुमस्तल निवासी अजायब भूते गजायब गनी में हरियंग करियंग करीम रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुयंबंग सुमंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते तो प्रसाद सोइए श्राव समूह सिदान के देख फिरो कर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुधायक सन समूह अवनिगति के सारी देश को देख रहे हो मत को न देखत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूँ ते एक रति बिन एक रति के माते में तंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कोर तुरंग कुरंग से कुद पौन के गौन कुजात निवारे पारी पजान कपूर बलि बन्याव सीत न जात बिचारे इते पै तो कांपे पुपत अंतकुना के पाएं बिदारे जीत बिरे सब दे दिशान को बार जित टोल मृदंग निगारे गुजत गुण गजान के सुंदर हंसत है हजराज हजारे पूत पविख पवान के पुपत कौन गने नी जात बिचारे श्री पत श्री भगवान पजे बिन अंत को अंत के ताम सिधारे तीर्थ नाम दया दम दान सुसंयम नेम अनेक बसिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन समान समान को पिख है पौन हार जति जत हर सब विचार हजार को देख श्री भगवान पजे बिन पूपत एक रति बिन एक न लिख सुध सुबा दुरंत दुबा सुसा सनह दुर्जान।

0: लिए सात समुंदरन लोग गयो पर लोग गो आयो बास कियो बखियान सो बैठ कै ऐसे ऐसे बैस बतायो साच कहो सुन लियो सब जन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो कहूं ले पायन पूतरियो सिर कहूं ले लिंगले ढलकायो कहूं लिखियो हर अवाची दिशा में कहूं पुछा को सी सुनवायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूड क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कूड क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो।
1: कवियो बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुट सबै तुम कावो आप हाथ दै मोय बचावो सुखी वसै मोरो परवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर इच्छा अनंज कर दै करियै सब बैरन को आज संगरियै पूर्ण होए हमारी आशा और भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई और न त्याओ जो बर जाओ सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारियै चुन चुन सत्रो हमारे मारियै आप हाथ दे मुझे उबरिया मरण काल का त्रास नवरिया पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तुजो करियो रक्षा राख लो।

तुम हो पुरी चतुर्दश कंता, काल पाए ब्रह्मा बपरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जमन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो, जमन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताए हमारा, जमन काल सब जगत बनायो, देव दैत जचन उपजायो, आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा, नमस्कार किसी को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी, शिवकन को शिव गुण सुख दियो, सतन को पलमो बद कियो, काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, टीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, काट काट के पट पट की जाने, जब उदकर करा कर तारा, प्रजा तरत तब दे अपारा, जब आकर्ष करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ, देते बदन सृष्ट सब थारे, आप अपनी बूझ उचारे, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अल आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूड उचारत पेदा, जा को पेव न पावत बेदा, ताको कर पाहन अनमानत, महामूड किछ भेद न जानत, महादेव को कह सदा शिव, निरंकार कर चिंत नहीं पेव, आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत पिन पिन तोय तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, कह सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग प्यो राव कई पूपा, अंडज जे राज से तजकिनी, उत्पुज खान बहु रज दीनी, कहो फू राजा है बैठा, कहो सिमट पयो शंकर कैठा, सगरी सृष्ट दिखाए चंभव, आज जुगा स्वरूप सुजंभव, आवरक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रन काता, जे आज तो तब सरनी परे, दिन के दुष्ट दुख्त है मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिन के तुम संकट सब तारे, जो कल को एक बार तिहाय है, ताके काल निकट नहीं आए है, रच्छा होए ता सब काला, दुष्ट अरिष्ट तरे तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहे न हर हो।

ने कीर्तन सरवण कीते। अमृत वेले धन धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सचे सतगुरु जी महाराज। जदों धन गुरु रामदास दाता जी दे घर सचखंड श्री हरिमंदर साहिब अमृत वेले तख्तां ते सुशोभित होए खुले दर्शन दीदार दियां दातां समुची ही कायनात नूं सृष्टि नूं ब्रह्मंड नूं बख्शिश होईआं, जो अमृत वेले पावन मुख वाक सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी पावन अस्थाना तों जो हुक्म बख्शिश होए धन धन धन गुरु अर्जन साहिब सचे सतगुरु जी महाराज। शहीदां दे सरताज शांति दे पुंज रब्बी पाणी नूं मिठा करके मनण वाले तिन्हां दे मुखार बिंद तों उचारण कीते होए बचन सूही राग दे अंदर सूही राग दे शंत हन। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंक 784 अते 785 दे उपर पावन बचन सुभायमान हन। पावन मुख वाक दा पाठ, क्योंकि पावन मुख वाक सूही राग दे शंत होण करके मुख वाक लमेरे हन। पहले पदे दा पाठ सत्कारयोग गुरमुखां दी रसना तों आप जी ने सरवण कीते। आओ पावन मुख वाक दी विचार आरंभण तों पहलां साहिब जी दे चरणां दा ओट आसरा लैंदियां होईआं गुरु चरणां विच अरदासां बेनतियां। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सचे सतगुरु जी महाराज। धन गुरु रामदास साहिब सचे सतगुरु जी महाराज, आप कृपा करके पावन मुख वाक दी विचार करवा लैण। समुचियां ही संगतां आपो अपनी रसना दी पवित्रता करदियां होया प्यार विच भिज के इक वार उचारण करो।

गुर अर्जन प्रतख हर कल युग जहाज अर्जन गुरु। गुर अर्जन सच सिरजन हारा। भाई गुरदास जी ने जदों धन गुरु अर्जन साहब सचे सतगुरु जी की वडियाई कीते ते ऐसे बचन भी सानू बख्शिश कीते हन, गुर अर्जन विट हो कुरबानी। धन गुरु अर्जन साहब सचे सतगुरु जी दे मुखार बिंद तों उचारण कीते होए अज दे पावन मुखवाक सूही राग दे शंत आरंभक मंगल एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद। परमात्मा एक है समुचे ही संसार दी कार करन वाला, संसार नू बनाउन वाला, संसार नू चलाउन वाला, संसार नू मिटाउन वाला एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद। ते उस परमात्मा दे नाल मिलाप किवें हुंदा है, मेल किवें हुंदा है, मिलाप दियां दातां किवें हासिल हुंदियां हन सचे सतगुरु जी।

कौड़ा बोल बोलना परमात्मा जानदा ही नहीं। ओ पूर्ण परमात्मा पूर्ण परमेश्वर कौड़ा बोल बोलना नहीं जानदा। और ओदा वेखो किड्डी वड्डी वडियाई है परमेश्वर दी के ओ साडे औगुणा

0: मिल साधु दीना कहन लगे सचे सतगुरु जी ने नाम दिया दातां दितियां। मिल साधु दीना सचे सतगुरु जी ने नाम दिता तां कहन लगे तां नाम लीना तां फिर ओदा नाम लिया जपिया ते जदों नाम जपिया जन्म मरण दुख नाठे जमण ते मरण वाला दुख जेड़ा है ओ खत्म हो गया।
1: सहज सुख आनंद कनेरे होमे बिनती गाठे
0: जदों नाम जपिया ओदे विचों सहज अडोलता दियां दातां ओदे विचों सुखां दियां दातां ओदे विचों आनंद कनेरे बहुत आनंद दियां दातां होमै बिनठी गांठे ते जेड़ी होमे दी हंकार दी गंढ बजी सी ना अंदर कहन लगे ओ भी टुट गई। मैं खिन थोड़ा जिहा रुके एक बेनती आप जी के सन्मुख करा गुरमुखो। एक सज्जन नूं पढ़ रहा सां बड़ी प्यारी उहने गल कही कहन लगा अज दे समें विच जदों कोई प्राणी चढ़ाई करदा ना ते जदों उहनूं संस्कारिया जांदा ते कहिंदा संस्कारन तों बाद राख दे विचों स्वाद दे विचों कहिंदा होर तरह दीयां चीजां लभदीयां। पुछिया केड़ियां चीजां लभदीयां कहन लगा किसे दी राख विचों लभदे हन स्टील दे गोडे। तवज्जो देना जिहड़े पवाए किसे दी राख विचों लभदे स्टील दे गोडे। रब ना करे वाहिगुरु सभना नूं तंदरुस्ती दीयां दातां दवे। गुरमुखो कई वार किते कोई गलबात हुंदी है ते शरीर विच किते ना कोई राड पाउणी पै जांदी है जदों डाक्टर राड पाउंदा कहन लगा कई वारी संस्कार तों बाद ओ राड लभदी आ कई वारी स्टील दे गोडे लभदे राख चों कई वारी प्यारियो ओ राड लभदी आ जिहड़ी डाक्टर ने कई वारी पाई हुंदी है पर कहन लगा ओ किला नहीं लभदा। तवज्जो देना कहन लगा ओ किला नहीं लभदा केड़ा किला कहन लगा हंकार दा किला नहीं लभदा जिहड़ा सारी जिंदगी इहदी धौण विच चढ़िया रहिंदा है। प्यारियो साहब कहिंदे हौमै बिनठी गांठे ओ जिहड़ी हंकार दी गंढ बज्जी सी ना

लड़ीवार कथा विचार चलती है नाल नाल मारू की वार दसवीं पौड़ी अज विचार दे अधीन है। दसवीं पौड़ी दे नाल दो सलोक हन। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंक 1099 दे उपर सलोक जो आरंभ होने लगे हन। दो सलोक हन। सलोक भी धन श्री गुरु अमरदास महाराज जी दे हन। ते याद रखियो पौड़ी भी धन श्री गुरु अमरदास महाराज जी दी है, क्योंकि ए वार जेड़ी है धन गुरु अमरदास जी की वार है। आओ सलोक अते पौड़ी दे अर्थ भाव आपां

नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका पुण्य दर्शन में। मैं हूं आपका दास, जो आपके लिए लेकर आता है हमारे अध्यात्म के सागर से ज्ञान के मोती, जो आपके जीवन में दिशा और दशा बदलने में सहायक बन सकते हैं। तो आप कितना वजन उठा सकते हैं, या आपको सबसे भारी वजनी क्या लगता है? नहीं, आपको कोई जिम ट्रेनिंग की टिप्स देने वाला नहीं हूं, बल्कि एक साधारण सा प्रश्न है कि दुनिया में सबसे भारी क्या है जिसे कोई भी इंसान उठाकर कभी सुखी नहीं रह सकता, बल्कि अंदर ही अंदर अपने आज और अपने भविष्य को अंधकार की ओर अवश्य ले जाता है। अपने दिमाग पर वजन मत डालिए। आपका दास है ना, जानते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।

पुण्य दर्शन सुन रहे हैं आप, तो ऐसा बोझ जो भले ही आपके कंधों से उतर जाए किंतु मानसिक रूप से आप उस बोझ को आजीवन ढोते रहते हैं। चलिए एक जंगल में चलते हैं जहां से गुजर रहे हैं दो ब्रह्मचारी, एक वृद्ध गुरु और उसके साथ एक युवा शिष्य। दोनों ही अपनी परंपराओं से बंधे हुए कड़े नियम के पक्के। जिस गांव से गुजरते वहां केवल तीन घर से ही भिक्षा मांगते। किसी स्त्री को स्पर्श करना तो दूर, उसकी ओर देखना भी बड़ा अपराध माना जाता था उनकी परंपरा में। ऐसे ही वो जंगल पार कर एक गांव में पहुंचने वाले थे, तभी उनके आगे एक उफनती नदी आ गई, जिसे पार करके गांव तक पहुंचा जाता था। दिन ढलने वाला था, आखिरी नाव भी उस पार जा चुकी थी। दोनों ब्रह्मचारियों को तैरना आता था, तो उन्होंने सोचा हम तैर कर निकल जाएंगे। थोड़ी दूर पर एक युवती चिंतित खड़ी दिखाई दी, जिसे देख युवा साधु ने मुंह फेर लिया अपने कड़े नियमों के कारण। किंतु वृद्ध गुरु ने लड़की से उसकी चिंता का कारण पूछा, तो उसने बताया कि वो गांव में रहने वाली है, आखिरी नाव भी चली गई है, मुझे घर जाना है, और मैं कैसे ये नदी पार करूंगी। बूढ़े ब्रह्मचारी ने ऐसा क्या किया जिसे देखकर उसके शिष्य के होश उड़ गए। बताता हूं थोड़ी देर में, मैं यूं गया यूं आया।

0: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो, आ गया जी जे स्टोन मेसन, पार्टी करनो बनाए एकदम क्लासी, असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल, हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
1: आप सुन रहे हैं पुण्य दर्शन।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मैनु भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: सेम पब एज द मेल वंस.
1: अच्छा वाह.
0: इफ यू गो टू सॉवरन हिल जो तुसी जाओ.
1: अच्छा.
0: एथे भी you know wow. India is far more advanced traditionally than Australia was and
1: well
0: still is.
1: Mainu pata hi nahi si. Acha. Are yaar main to 95 born na gussa hi kar gaye. Mere time te to ja pa rahi hai na. I am happy bhai. Australia da 2026 jo auratan same pub je ja sakdi guys. Eh mainu pata
0: hai. So kehne da matlab hai assi tag kar denne ha ki gora hai.
1: Ha.
0: Eda eda da kuch nahi hai. Je tusi apni us head horse high horse to utroge.
1: Ha.
0: Ta thonu dikhega ki samne wala bhi मेनू हर गल दे उते रेसिज्म दबान दी कोशिश नहीं कर रहा. वो सिर्फ एक अपना पर्सपेक्टिव समझ रहे हैं. इस करके कहनी है ऑस्ट्रेलियंस थोड़े इनलॉज ने वो कुछ भी कहना है तो डंडा पहला चक लेना है कि मेनू दबान आए ने.
1: हां कि तू बोलया कितना
0: बोल.
1: अब वैसे क्या ठीक है मतलब इंडिया च रहंदे हुए अगेन इंडिया सच अ ह्यूज टर्म. मैं अपने शहर के अंदर रहंदे हुए मेरे मोहल्ले के अंदर भी दो लोग होंगे जो मैं पता कि यार दे आर नॉट नाइस पीपल दे आर नॉट काइंड पीपल या फिर हो सकता वो मेरे बारे इस तरह सोचते हो या फिर साडा कनैक्ट ही ना हो. तो यह तो मतलब किसी होर रेस के बंदे नाल भी हो सकता कि जिस तरह असी रेसिज्म फील करते हैं साडा भी एक तरह का यह रेसिज्म है ना. एक सोचना
0: फील कर दीज
1: गाइज आर टू फास्ट.
0: टेल मी वन थिंग. हाँ, जी गोरा बैठे हुए हाँ, तो तुसी ओदे सामने पंजाबी च गल कर रहे हो.
1: हाँ, ये तो हुंदा.
0: गोरे नु लगदा है ना कि तुसी ओदे बारे गल कर रहे हो.
1: हाँ,
0: वो रेसिस्ट फील करता है.
1: नेचुरल है समझो मेरे साइड तो कोई बैठ के तमिल च गल करनी शुरू कर दे
0: तो नहीं समझ आएगा. अच्छा ते हसनगे गलती नाल जे थोड़े वाल वेख लिया 100% तुहानू लगेगा तो पायो थोड़े वाले गल ना कर रहे हो. आई ऑलवेज से रिस्पेक्ट. अपने बच्चों नू भी असी ओही सिखाना है. दे गेट बुलीड एट स्कूल रादर देन लेबलिंग इट की बुली रेसिज्म है बुली है. समझो की बुली हो रहे है
1: या फिर समझो बुलिंग ही है.
0: व्हाट इज द ट्रिगर. हां
1: कि ट्रिगर किया.
0: अपने बच्चे दे नाल गाल करो. टीचर्स दे नाल गाल करो. टीचर्स दे उत्ते जाके हमला ना बोलो कि थोड़े स्कूल दे विच रेसिज्म. एक्सप्लेन व्हेन आई से दैट देयर इज जेन्युइन केसेस ऑफ रेसिज्म एज वेल कृष्णा व्हिच आर वेरी हॉरिबल.
1: खासकर हुन थोड़ा जा फंडामेंटलिज्म
0: तो जान के भी हो रहे ने. बट मोस्ट ऑफ द टाइम असी एक अम्ब्रेला दे विच पा देने आ कुछ भी गलत होया. जे मेरे बच्चे ने कुछ गलत भी किया ना असी शह ए बोल के दे देने तेरे नाल ते गलती हो रही है तू तो कुछ गलत किया नहीं है रेसिज्म है.
1: अल्टीमेटली बच्चे दे ऊपर ही पैना ओदी पर्सनालिटी नु ही उन्हें
0: ओही चीज गलत सीख रहे. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड जे असी बच्चे इत्थे लेके आए हैं या असी इत्थे पैदा कर रहे हैं ओ साडे इत्थे आन दा बोझ ना चक्कन. वी एज फ्रेंड्स टॉक टू देम एंड एजुकेट देम राइट.
1: मेरे ख्याल
0: से कल दी पनीरी तैयार कर रहे
1: हो. जो रूटीन है जो इस देश दा दत्ता सिस्टम है यू कैन नॉट बी राजा प्रजा विद योर बच्चा है
0: ना.
1: थानू एक फ्रेंडली लेवल ते ही रहना पड़ेगा. थानू बहुत बहुत इन्वॉल्वमेंट देनी पड़ेगी. द वे यू सेड की है ना हो सकता बुलिंग हो रही हो मे बी देर इज अ बॉडी शेमिंग की गल हो रही हो पर क्योंकि शायद अलग कम्यूनिटी का बच्चा अपन रेसिज्म के अंदर दे देवे है ना उस अंदर सैगमेंटाइज कर दें. बट द प्रॉब्लम स्टिल परसिस्ट क्योंकि जिस बच्चे ना बुलिंग हुई है ओनू इनसिक्योरिटी अपने रंग नाल ते है ही नहीं उन्हें पता उस करके नहीं हो रही है,
0: नहीं हो रही है किसी
1: शायद मेरे बॉडी करके हो रही है कि मैं है ना
0: कुड बी ड्यू टू बॉडी ऑर्डर कुड बी ड्यू टू अनकेप्ट हेयर. It could be you are the best looking person.
1: And it could be also
0: it could be कि तुसी बहुत intelligent हो तो लोग की चिढ़ रहे ने तो तुहानू वो कर रहे ने.
1: सब तो main कारण ही वैसे bullying दा ही हुंदा ना.
0: Because you are the smartest kid. तो rather than putting it under racism or that, समझो problem की है.
1: सेल्फ रिस्पेक्ट जब बनानी है बच्चे लिए तो उन्हें बैठ के समझाना भी पड़ेगा ना कि कंसेप्ट की है.
0: कन्वर्स करना पड़ेगा. अपने लिए थोड़ा जा स्टैंड लेना भी उन्हें सिखाना पड़ेगा. एक दो बारी कई ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਓਗੇ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਓ. ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਦੇ ਵੈਨ ਵੈਨ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੈਟਸ ਵੈਨ ਯੂ ਬੁੱਕ ਇਨ ਅ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਦ ਦ ਟੀਚਰ. ਗੱਲ ਕਰੋ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ. ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਟੀਚਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੈਨ ਦੇ ਆਰ ਸਕੂਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਸ ਦੇ ਆਰ ਕਾਊਂਸਲਰਸ ਐਟ ਸਕੂਲ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ. अंधेर नगरी नहीं है पर चैनल प्रॉपर यूज करो. असी की करते हैं असी पहले ही राशन पानी लैके टीचर से चढ़ जाने. वो जो टीचर भी इंसान है वो देख दे कि कन्फ्रंटेशन हो रही है डिफेंस से आ जाते हैं कि थोड़े बच्चे की गलती है. कभी भी जाके पहला गलती ना कड्डो. हैव अ कॉन्वरसेशन. बी मच्योर अबाउट इट कि ठीक है प्रॉब्लम दसो उन्होंने दसो थोड़े बच्चे से इंपैक्ट की पै रहे हैं. ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ
1: ਦੇਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦਾ ਰਾਈਟ ਡਾਇਗਨੋਸ ਨਾ

0: श्रवण
1: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
2: ऑन द 5th ऑफ जून।
3: की हो यहाँ, इन्हीं टेंशन क्यों लेती हो ये?
4: यार की दसा, मॉर्गेज दा काम आज भी नहीं बनया।
3: आज सिमी पैन जी आई सी, उन्होंने अपना मॉर्गेज यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज तो थोड़े टाइम विच ही करवा लेता।
4: अच्छा, असि भी उन्होंने कॉन्टेक्ट कर दे फिर ता।
3: जेकर थानू भी लोड है होम लोन, रीफाइनेंस, कार लोन या फिर एनी अदर लोन दी, ता आज ही कॉन्टेक्ट करो हरप्रीत सिंह फ्रॉम यूवी फाइनेंशियल सर्विसेज एट 0430-8833-11 और विजिट uvfinancial.com.au।
5: विश्व पद्धर ते तेल दी घाट सानू सब नु प्रभावित कर रही है। सरकार कोल एक राष्ट्रीय तेल सुरक्षा योजना है अते असी इस वेले दूजे पद्धर ते हां। अपनी कार दी घट अते वधेरे कुशलता नाल वरतों ट्रक ड्राइवरां, किसानां अते जरूरी सेवा वाली तेल बचाउण विच मदद करदी है। हर छोटी कोशिश मददगार है। fuelplan.gov.au/punjabi ते जाओ। ऑस्ट्रेलिया सरकार कैनबरा वल्लों जारी।
6: हां जी हां जी,